0: हेलो,
1: हेलो।
0: गुड मॉर्निंग मणिपुर लाइफ एंड प्रोग्राम तरह मुक्चरी
1: हाँ
0: तभी उकरम बा फिल्म शेर तभी कदा बनो
1: नंग धनरंग दबा हाइट बा मोबिंग का लटार खागा हदानंद का धमिना बा इसे जो नजीक से प्लांटे यूं युवा
0: इसे की सही होता मुतंग है भी युवा
1: को इंजियमा नथ मिसम सुम हाइट

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: get off! Come, Labrao!
1: Subedar, Yengbiu, Manas Lambi Singh Samji Khaidra Chenare. Adubu, I could get out of her my day, Lambi Kayasu, Sanaton Pankre, Subedar.
0: My day, Lalai Kayas, Sanaton Pankre. Makwashu, my day, Lambi Singh, Jamal with the Tawai of Pankre. Wali, Tachigani. न कोई खराई की तुंगे लगाओ
2: सुनार
0: कंग लग रहा मिनाई में सासा खुद लाए मधी मिशन हैं कीबना न कोई न कंग कीबने याई अदबो मित्ते ही जाते वन कोई न मांग हैं मधी आई ठोक तमने
1: अमुक्ती यें भी सुनार अवांग लोग की सर को मलेश लामी सिंह नौ बनाएगे मक्कोई के लंबा लग रहा मते लामी सिंह खरन नौ प्लेटनी आई कोई हम जी करी तो बुताव गे
0: ओ I could go on not living on missing, missing current nobly.
1: So we are the San Viduna, other one at Pinabu, and I could cut it off so high below.
0: I could hold it, you're a buck in the mud, him.

0: ताद सिरी जु तक कन्बी नब वंगांग आंग पदे की दी आ सेरा मक दी पीबी की दरे
1: ओ अदु ओरे बति फैदना अते लारी मसी से मोई पाबुंग द वा फम मत हाउ दोक जगे तौबनी
0: ही करी वो फम नो हायु दासी दना
1: नसानु पा ताम्र सिंसी मकोई पाबुंग द अमत खाबे होको
0: करी नो ने ममा नों हायरी बसी इपा पाकत पवा वो इन हेक तौर देना ने ते नशा अनुपा खमो हरी सिबू माबू सीएम की दौर ब्रो
1: नती मई पाबूबू हनक मर इपाऊसीबू ताबीद्रब्रो
0: करी अनो पाव नोने आई दी कदाई दे गिटार दगे
1: इपाक पुंजाउ थिंदुना कना की खोंटेक मितांग अमत सिथदन तानारब पाउदुबो
0: आई दी तसेंग ता दी ने नान कई आई दी युम तो सुलेती नंगी पाव से खरा अखन अब पाव मान करे दा
1: अखन्न भाई बहु असेंग अखन्नबनी मखारोंगी ताद गुलामसा
0: ता तो गुलाम साथ है दी नांगोंगी दो
1: नांगोंगी ता गुलामसा मानने
0: अदो के दो रबा
1: मागी मचानुपी अम लेबदो सयम बोर तौरग थाजग दोरी हाइरेने
0: करी नो ने मामा नंग हाइल सी बो ऐ को गी ले बाग सी दो बो सयम बोर तो बुगी सत न बी दी अमुक ते थे न रख त्री ने विष्णु विष्णु पाउसी जा जा नी अदु मरम मम दी ले फम थुई करी गिनी हाइन गे ने
1: अतैगी नतेदा सुमदौबनी नांगोंगी सनलाबा काउथाबा येंसिनदबा मलेबदु
0: अदु कै दोर बा
1: अदुना युमथंगनबगी समल थुदेकबा येंसांगनापी कया नैखाइदुना साथोकबा लैकाय वांगमलानुना अकायबे यामन तौबदगी मियाम हुबतुना मान मंगहनदाहनखिबदु सिंगु याद्रबदि सन्दु हातकनी हाइदना मयाम जंगदुना तौबदगीने तागुलाम सातु नाखोंग छाबा पोथा फंग खंगदब फिबम ओइरकबदगी सनहातपदी श्रीजुना यादबना मागी सन्दुबु सई थादना तिहन बंगम मीदुदा मसानुपी तुमसाबु साउना अवोंग अवन तमदुना थाजगनी हाइदन मियाम द लाउथोख्रबनी
0: अदुदी ता गुलाम साथ की थबक सी लेबाक सी दा अनोब अमनी है याम फै कई नो
1: कई देगे सिदिया
0: करी नो ममा नंगना मी गे अनोब सांगें की थबक अम हौदोक चरुक पदा न खोई दौदो अदुक याम ने साक ली दुबु करी गी नो
1: हो खोई दो जाक पना दिए ngangung gi mung si sang ga winning di ye sang ga winning di ye manga kan ba ai mangai re ning thong na san ba ina khun ba hai da na aduga ai khoi bu na ha tumit kang dong na khali ba ni aduna sang ga wi jan ning de
0: kana na ai khoi ga sang ga wi ga ni hai jan biram la gin he mama nang bo amuk ta tap tho kho ne
1: wi pa bu ma si tap tha wi ya ba ma tang na te go
0: kana na hai jan biri ba no na sa an ba bu sang yin yau ga ni hai ra bro
1: ओ गसाई न ने मागी संतिहन बगी संगिंग परीक्षा दो नसानु पासु यागनी हाइदन निल्ली बसे नसि निनी हुमनी तुम सुरबनी
0: ऐ दि अतै वाखल मत लेरो रे नसानु पान संगिंग परीक्षा यागी वादी खलु दे दना कदाई दि सल तिहन बबो अराई बतुना अतै अतै संगिंग परीक्षा याव अमत माई पापु के पाउतार मो
1: ताते ताते मी श्याम से नि मुक्ति सुर माले संगिंग परीक्षा से द माई थी बन नंग लिप्स
0: नशा नुपा संगिंग परीक्षा जाओ रूरे माई पाले ए हाई बसु न तपसिदा नंग न दुख याम न यानिंग दे दुन दी ईशा न संगिंग माई पाल पका ओर मब्दी लोई दोरी ने
1: लोई दोरी नी
0: नशा नुपा ताम्रना पुनः मुक्ति के हिंदु न माई पाल को पहाई बसे पाम पर पाम दबर सेंग नम तो खुम
1: अजु बुदी इसान पुनम तगी माय पापा परीक्षा द मको ओइ रक बबु कै दो बकी पाम लुइ दोरी नु
0: अदु वर दी इसान शांति हन बगी परीक्षा सी यो जे सनु कै दो गया हा नु पी दुदी लो द्रब सु याइ दना
1: न पाने सामान रग अई तोम द तोंग हान ता बगी फिबन द ला क दोई
0: हे मान बगी वांग हंग न तीन हे नशा नुपान पुनमक्त के हेन्दु न माई पक पकाई दू पाम

0: ये बात सही था द बोती हन बगी संगें परिका याऊ के खली बरने इ पाद तुक त मुता सिदना
1: बाबू नशा लाइबक यंग जरे की लेप चरे बाबू
2: बाबू सा हे सब हे माने हे नम दुन ही दान बसे यहन ग दोरी
1: इमा कई दो रोगे नहीं माँ
2: कैसे तो गे दा दो बो नंग बुन नबुक निंग दा सब यूं ने लेप लब रहने
1: इमा लेप चरे अतई की नती है इमा संगिंग ने बसे यंगिंग बगी ने
0: कान दे बामा ऐ कोई न थिंग भी यार रोई इसा हाँ की पुंगिंग न लेप करे नशा हाँ ने मिठोई मिहे न बा बोर दम पीने बिरो से
2: पारे पारे इसा हाँ वो याओ पे पाम न बती है इसा हाँ नांग मोम की संति हैं बंगम बा उसे रुको
1: इमा
2: मुझे पाबुंग सु इसे हाँ ना माय पाक ना बा
0: इपागी ताम्रा
1: पाबुंग
0: नंबु नंगों की संदुबु तिहन बग नमलेद्रो
1: नशा
0: है सं तिहन बा सा अते तिहन बग खर खेने को फरे इरु सादें तुने सेम साजरुरो इपासु हक्षांग सिंधु उसीके
1: भगनी पाबुंग
0: है करी सुखलुनु इशासिदी इसहाने सोई दन माई पाकनी चलो चलो
1: नुमितो निंग सिंगली मोइरांग सहित इन्हें कुम्सोक लिशिंग मग सात्रेत मरी फुद्रा माथोई शजीबो की पान खलकपा तरी निपान में इराय नुमिता श्रीजुत नौसिंगे नोंद्रेन कोम महाराज ना कंगले इम्फाल मयोल मक्तदगी कौरियल मबु बोरो साहिब ना सिंजा की दमक फादु ना हाथ कद बगी सीएम साहूरे हाइबा पाव दु श्रीजुत की सना ना कोम योर तुना श्रीजुत ना कांग बम सा मेम जोर बो मैत्र बागता हाउ ना दब थबक तौरी बा साहिब दो इकाई बा पी ना बा थारम में मेन जोर ना अकन मवाही ना था बदा शाही बदु इकाई रतुना शंगा लुपा कुंगा लोइना ना पुरक तुना श्रीजुत तंगाक पी ना बा हाइजकी नुमित असिदगी मैतेई निंथौना मरम सादन मैत्रबागत सनहात पथिंखि करिगो मोफम मसिव थवोइद बथोगलेबदि दंदी सुपीरे असिगुम सनबी सिलेबना नांगोम गि सलंगाव बसि फादुन फूसैब तौबदगि सिदो ख्रबरदि हाइदुना किनबदगि असुक्विदगलेबसि सल्लसि बुतिहन बंगमददन लाखिबनि
3: मैं बियंग बियो मैं बियंग बियो मैं बियंग बियो बियंग बियो बियंग बियो तू मैं बंगी ताम्रा पपाम सासे संतेन बगी सायंग से याऊं निंग रु लार से बियंग बियो बियंग बियो चे गम सुंग गम लोई दा बता मुझे तो पुतो खोने इन्हों इतिहन बता लाइका इस मम्मी मिसाली आई पाव गम तो तंगरांग ले हो रही मिने
4: ताऊ मैं मैं बंगी ताम्रा हाई ब्र अचंब नती है मपा खिरान दोसु अराई बनती है लाइवा तिंगवा गासु याम न हई बनी को
3: ओ ओ अदुगी बुदी खोल ग खंग बाई दुनी
0: इपागी तामरा
1: पाबुं
0: सी योर बुदी इपासु सत करके कुमाई वोनी यंग लुरके है ऐन हाइब सिंदो काउनी को
1: काउजरे पाबुं
0: सामु हाइब चाओ क्रब सजाओ दो ताइबंग मिओइबन फादुन सिजिन रिब दुनिने हाय इपासली हाय
1: नसा काउजरोय पाबुंग माय पाक्सर के पाबुंग
0: इसा माय पाक बोजरो को
1: कया दनो से नांगुंग की सल्लाब कोंदेइबा काउरेल सिना लेरम बयाय हायन सिंग अब मफम सिंग दि लेत्रदना नरांग नुमिदांग अहिंग सुप मीगी इंखोल द अकाइब तौब याब मखै तोरुम लगा मादि मफम सिदा करी मत लांजदब सादुना कया द नुंगाइन पोथारी बनु येउनिसे हेंगांगोंगि सन से से से रो रो रो रो रो से कोन थौरी से नंग तो दु हुक्सिन बिगे से आइ रो रो ने ओइ मि आइ मा तेगि चिल द मबाई पिरान सादुन सिएन खिन हे फाइ फाइ फाइ खंग नि नंग नंग अंबंग गशेलो इश आई बु मारी हैं न लंजेन यांग बताऊँ ना Ay, shuk, nang magay ta.

0: जिला दरबार की खुंगशत तो समझिन दुन लाख पशिना लोक चाहु योगे मफुम दुन यहाँ पथार व मतुंग द लेप तुन लाख पने गुआई खुंगबान द ठुंग बरलार साहेब हे ठुंग लबगा जिला दरबार हौगदो रुबनी हाइब की वफम अताउ परे न की बसिन हे न निंठो होई अवा पोलुम नरे पुम नमक वातियम नगदोरीबा पाबुंग सन क्या सना हक तक इंग शोक लिसिंग अमग चनी पान कुंथ्रा हम दोईदा साहेब सिंह तौन की भवता इचे दो कौरम मसी याउद्रबदी मखोइना तो मुद लेप खिदोना पुम नमक ओन तैन बद चट खिबया मसी गिसु मथकता ख्वाई दिगे हेन मरु ओइरिबना इमा सिजन मतम चुप्पद थानब यादे को हाइन थम्बी खिब श्री गोविंद की निर्मल इमा सिजगी मखुत मकन मचाई की दमक तपी व पाना मतब उम नमक अशिबु फुले तोड़ देगी मणिपुर सनाले पाकी कंगला तान चेच चतुन लौर दुना मुक्तन हलवाई रख पंगंब इधारे कना बुलाई बन थेंगनब अहिंगी मतम सिद नुंगाइन तुंखुन हुल्लेब इदायरेम सिंगबु निंगथवैन हुदोपगी थौना लैत्रे हा गोविंद ननाइ नाउजिंगले नोंगद्रेन खोमचंद्र किटियंगोन येंगबिरि चांगयंग शिबु करी हो
1: थेंगलब अहिंगी मतम नवैबगा श्रीजुटना मनाई सिंगी नुंगाइन तुंखुन हुल्लीब शिबु कायहनिंग द नुंग द ओम दुन शाक्लीब मैशाक शिबु करी वैरी गबा
0: इदायरेम सिंग नुंगाइब तुंखुल कायहले वारू इपोयरे लमदम द तन चट्टुना श्री गोविंद गी पुक्निंग हूरब निर्मला पलेम इमा शिजगी पाना कुआंग सुंगराई मनम सुबगा इपन पंथो मैदिंगो चिंगे नोंग्रेन खोमगी लरिक चाजुम नंब निंगथवगी खुत वाइथुंगन मंगंब तंब कनाबु लईबगे
1: मदाइरेम तंब कनासु लईत्रबदौना इ माई बिया ताम्र सिंह ऐ लईरिना करेगे श्रीजुत न अवा हुजोंग लांगदगे ऐ श्रीजुत तंगचगे श्रीजुरी बुंगो ननाइ माई बेता अमर सिंहालय जरी श्रीजुत ननाइन भक्ति कच्चरी
0: कना करी हाइबा तामर सिंह हगुल नुमाय रेदा
1: ननाइ तोलब तामर सिंहाना श्री गोविंद मदी श्रीजुत की थौजाल फंजर बदी हयिंग इनुंगान बगा इपोई रेलम द सच्चदुन श्री गोविंद की निर्मला लाइरिक साजुम नंबा अयाशिर तप पाना मत पुनमक सुन लव जरुगे सनाय थंग पिन बियुने श्रेजो
0: नशी मैते निंग थो चंद्र कृति आई कया के मति नुआय रबन अथेंग ब अहिंगी मतम नग ओय बगा इदारेम कनासु चोंथोक पिरक त्रबदा आई लेरि हाइने चोंथोक पिरक प इदारेम ताम्रा नाकिलमन बु करिन सिंगनी

0: idaire mai bia tamar sing aya kasulenga oina nga ngori ngai degi maru oina su loina tinajarak pa mahak ning thoi gi amadi laipak praja gi de makhanduna ning thoi na akaw ba mana hundok lam laba shri shri gobinda ji gi nirmala ima se jana tappa pana sungdai ipan pan thoi pai bungo chingle nongdren khomba gambhir singhana thambiramba naksha yoba karar gi chajum nambalari chi adubu nadairem ta maraida ipore lamda hanna chatuna lawjuru ge haina chatki ba masiga thana numi nini shukre do hairi ba numi nini ashimak ningthawaina chaade thakte tumde karigi de makshu waroi dori banao मठन तो चटकी बनी लोकताई कया लालंगनी अशुप उमंग वामंग कया गी मनुंग तम थीर बस अमूलमसा कैशान लमुई कहीं ने चिंबक कया गी चक्का फमोइरी बनी लेते मानव मफम सुनत सिंग अमुका खटपा अमुकुम थबा तब तब याद बनी पुम नमक कसे खंठरु रगा निगठवाई ने करम ननुआई ने ले थोक पंगंगे दौरी बनाओ हा गोविंदा हा लाइनिंग टू ननाई बुक करी ओए रसीगे
1: मसी माई बियाता मरसिंगईना सिलसर दगे मणिपुर के सरा कंगला द वाइट थुंगदुना ममा सीज मस्ना कुमुदिने ग उनजदुना दरकार लेब पलम सिंह पुनमक ममा सीज न खंगन मिलो पिरंग सिंथन खुदई अनबमदा सेत यम सिंदना तामर सिंग एगी नक समदा सोई द नाम द बहुक्सिन बिरकी मामा सीज खुरम जदुना सना कंगा दगे खोंग थांगदो पाहुरकी यम पाव सनमदना कसार मै कई तमना खोंग न बाहुरकी आइना बिकलेंगाइदा इमा बाबंग तक पिकी बवा फमसिंग कोदिंग बक्तगी लेबा के लेबक निंग थोकी थबक नमांग द थाग द बनी निंग सिंगलक लकी पुरी ओरे दना सी ओरे दे ऐन नम लगनी हाई बी अनोबा सा अमलाकले कुंग सिसु तिंग कंग तुम्बो न तिन बगी इंग ना इंग सारे दना कम दोनी सी दे खोंदी ये दिवा खुदा ये से शगाई दुने ये सिंगे सीवरी दी खरदी साफ़गनी नशी तीन लाख लीबल लंबी ये से हंगत धंधा चट पगिया राप दुमकनी मी ये मन खोंग न चट पदा यामद्रबद नुमित तरेत निपानी संग निप मफमनी अयामबद तरानी दि संग बनी अदब हंदकि अयि खोंसत नसिदि मतम मांगन बयादबना इनिंग थौद यामन सोकदब मरमना यामलबद नुमित खुमनी कि मनुंग ओइगदबने अदन अयि वारब सुपथा बयादि खोंग सिशो थांग बंगम सिलक्त्रे ए लेप याते इनिंग थोकन दब याते या आ हे

ताबिरे रिपोर्टर फिल्म असिदगे हामोम सदानंदगे नाइतोम खोंजलदा सचिन्द्र थोकचोम ना सैरिंगबा ओ गीत अमदितोम मथांगजमना सैरंगबैसै मथंगदम ताबिरसे राजा फिल्म असिदगे रस सरिता गाजमेरमदि दिनेश अनिगपनब खोंजलदा होमेन दिवाइना सैरिंगबा सूरज गोस्वामी अमदि सुरचंद्रना सैरंगबैसै

इसे सितान से खिबगल होइना ना फिल्म से लांथोक चबा मतांगस दलो शिंजरी थरम संदोक्तन तहंजरी बसी आकाशवाणी इंफाल गे एफएम संगाई चैनल देगिनी हौजिक नोबिजुंग बगी पुंग तारा निथोई तारक बगल होइना ना मिकुप खरगी मनुंगदा मणिपुरी द पाउ तावा फंग बिगनी

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, के थोड़ा नींग ऐसे
1: ओ तारी है ओ
0: होय होय कना होय बिरो नो कॉल तो बिरक दिसे।
1: इन हम छुपंग बने तो ना छिपंग ने दाउ यारे
0: होय कना कना होय बिरो नो मिंग दो मतन खंगसे के
1: ए डांग चाक चाक ले।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, के थोड़ा नहीं कहना हुई बिरा बनो
1: वहाँ पोषण को ना बेटी लाइट तो जमा भी से आपत्ति नहीं
0: हो। सिलापति
1: प्रियापति है जो ने
0: प्रियापति
1: हो
0: प्रियापति ऐसी खुद की थोड़म दा तराम नोक चरी ऐसी यहाँ हन बोर मालिक को प्रियापति का ये का थिंग नज़ाब से
1: हो और मालने
0: हो हम नोंगाई जे अदो प्रियापति ऐसी कर्म बफ़िल्म इसे ताबी दोइनो
1: थोकी देखी किसी प्रियापति ने अमन बहिंगी ऐसी कभी की तो ना तो वो तो अदू इन ताज़ा है कि नहीं मस्ती
0: थोकी देखी किसी फिल्म देखी
1: आओ
0: हॉय अवाब अहिंगी है ना तो बुद्ध को तो
1: आ
0: स्वर नियम दी दिने ऐसा निपुण सक में नबा राजन यंग कोकपम न सेरिंग बदु को गोपी न सेरंग भी सही दो
1: हाय ने मक्सान जो नंबर समझे बे सही हम ताकि ने ऐसी भी समझने एक कोई रह बने फोन होता वही जो मक्सान नंबर है ना
0: हॉय इसे इसे ताबी रो इसे इसे ताबी रगा हक जांग सु याम ने यांग ने भगत भी वो भी रो दुगा मखाता ने कोई की थोरम दस रुक या भी रो उ इसे इसे अददी तहंजरी
1: ऐसा सही है
0: हॉय तराम नोक चरी इसे ताबी नसी।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून। कैन आई बी रबनो? हो के
1: मैं नहीं फोन दब गया इसे कराओ दीदी बे ना।
0: राउ दगी बे मांग असे खोई की थोरम द तराम नोक चरी इबे मांग असे करम फिल्म इसे इताबी निक बनो।
1: मैडम उदुनाता लाई रहेगी कैनो मेरा काना सकपा टाइटन सॉन्ग दे ताजा रहे सर।
0: मैंने काना सकपा इमो चाथी आमने सेरिंग बदुको गोपी ने सेरंग बिसे दो।
1: कोई नहीं
0: होय होय दी इसे इसे तामी ने बयार द्रा হয় রেডিও তাবির বা মরুপ সিং মাইয়াম পুন এসে সিতামিন এসে সেই কদল তামচারি
1: থ্যাংক ইউ ম্যাম
0: তারাম নকচারি।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो गुलाबनी मैदान
0: गुड आफ्टरनून, कैन आई हेल्प यू नाउ?
1: किन सभी देगी हम संगम संगीता ने मैदान नुआई
0: संगीता कम दो बीरी के
1: जी हाल तारी मैदान
0: होय अतो ngasi karam ba film sei ta video no sangita
1: मरुक की मरुक फिलहाल ये पुष्पार ने सकता मपो ऐसे वहाँ ले जाना तो वैसे ही जनता ताज़ा गेम था
0: मरुप की मरुप फिल्म की
1: हाँ
0: हाय पुष्पा रानी ने सक पसे द इसे इसी संगीत आमते एमा एक होए की दमक गंग भी दोई रो
1: मासे दिन का गैर के थावा जान नुआई थी कोई थावा पुलिस से मारते के तमो भी जान दर लगी दर बजी हम नुआई जाते रहते ना मथंग नंगल दर गे
0: हाय हाय तो दी इसे इसे एक होए तुम थाजर अगे में हम पुना तामी नरसिरा
1: हाय मेरा ताकत सरी
0: हाय हाय इसे थाजरी ताबिनसी

0: हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, की थोड़ा हमने का नाम भी रखना।
0: हेलो हाँ
1: हेलो हेलो ताबी ब्रा, होय
0: ताज़ा
1: होय का नाम भी रखना। मिंग ले खम हाई भी हो,
0: मिस आई तियन था रही था ना बांबी
1: होय थंबाल मान भी ना से कोई की थोड़ा हम तो तराम नोक चेरी कर बफिल मिस आई ताबी के तो इनो।
0: मिस फिल्म मिस आई वो ये तो वो तो कैसे है
1: होय होय ना से सिर्फ मिस आई खन बनो मिनी
0: मिस ने गांग बजी अब तब ना ताबा
1: ऐने गांग बसे हम तब ना ताई ताबी रब राम तंगिंग भी हो ना।
0: ओ ताज़ा रे ताज़ा रे मिस
1: हाय हाय बियो हाय बियो अदु दिकरम बा फिल्म सेनो ता वीडियो से
0: आ कनोगी कनो आ करी तब शो मोमो ना हाउ गा शिशु ब्रा रे ओइ नम ब्रा हाय बि शिशु ताज़ा जे
1: आ फिल्म से देखी करम बिसे ओइ बिरबनो।
0: लाइ जरो जा खल्लु बि बान तव दो
1: हाय हाय हाय हाय ड्रम ना बॉय मदि सुस्मिता नि पुने सक मिना बिसे से।
0: आ हो होय मिस
1: हाय तो दि थंबाल मान बिसे से खुदोल तम जरक लेके तामिनरसी।
0: Thank you, Miss.
1: হয় তারা আমরা উচ্চারি সেই তামিনাসি।

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज, की थोड़ा नहीं कना बिरो बनो।
1: गुड आफ्टरनून. मैं
0: गुड आफ्टरनून कना बिरो बनो।
1: वांगू मलिन साबल वांगू काय दगी सुजलता.
0: सूर्यलता, हाय सूर्यलता, आई कोई की थोड़ा तो तराम नोकचरी कर्म बफ़े मिसे ताबी के दोइनो।
1: जपाला ने इंफाल है बदो पुष्पा रानी ने सब दो अजून द ताते जी.
0: जापान लैंड इम्फाल फिल्म की ओलांग था कि लेबाक लेगुम हैं तो बसिरा
1: होय होय होय.
0: होय तो दी से सी तहन चरक पे यार निको सुर जलता
1: यानी हर
0: होय से मैं अपने तामिन सी को दौलतम चरी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, मेरा
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम नी,
1: मैदान
0: गुड
1: मिठी इधर
0: आफ्टरनून
1: का जले
0: यानी यानी
1: मैं हमारा भी ऑन ऑफ आए देगी मिठी सुना तुम भी कहोगे
0: सना तुम भी होय सना तुम भी
1: अरे मैं ताजा मिल गई थी जो जो मतलब जो चाना बोले तो इन जो हाल बुद्धि है इतने थमान फिल्म दा और मैं जो उन सब को पकड़ सना कहीं मैं अपन में सब ने बकवा इसी कोई मतलब जो भी हम चाना गई थी नहीं तो
0: মাধৱী ফিল্ম গী হয় হয় চাকলি বেলা মাই অনুৰাধা পৰৱাল গী খঞ্জল দাকপদ হয় সি সেই সি তাবিনি রা
1: ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯇꯥꯖꯔꯤ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯑꯃꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯩꯍꯧꯗꯣ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯊꯝꯕꯥꯜ
0: ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯌꯣꯅꯦ ꯑꯝꯇ
1: ꯑꯃꯔꯖꯤꯠꯀ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯁꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯍꯧꯗꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯁꯤꯒ ꯑꯄꯨꯟꯕꯅ ꯁꯛꯄꯗꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯨꯖꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯠꯆꯔꯝꯕꯒ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯅꯍꯥꯟ

शुक्रिया निरुपमा। नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का FM संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त थोकचोम गीता।

दोस्तों आज है सोमवार और हम लेकर आए हैं एक अनोखा कार्यक्रम जहां बीता हुआ कल भी है और आने वाला पल भी, तो यानी कि गाने नए पुराने। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

दोस्तों, बेमान मौसम से सीधा चलते हैं प्यार का मौसम में। शशि कपूर की मस्ती और राहुल देव बर्मन का जोड़ी है। लीजिए सुनिए फिल्म प्यार का मौसम से ये गीत। आवाज़ें दी हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। इस गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने।

0: दोस्तों कहते हैं हर मौसम प्यार का मौसम होता है। अगर एक प्रेम कहानी शुरू हो जाए तो सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में ये गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: एक कहानी

दोस्तों आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का FM संगाई चैनल और आप सुन रहे हैं गाने नए पुराने। तो ये थे हमारे तीन नगमे बीते जमाने से। अब वक्त है नए जनरेशन के प्यार का, नए एहसास का, जहां प्यार ही इबादत बन जाए। केके और सुनिधि चौहान की आवाज़ में सुनते हैं खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत। बोल इशाद कामिल के हैं और संगीत प्रीतम का।

दोस्तों, सजदों के बाद अगर कुछ बचता है तो वो है शायरी। अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में हॉलीडे फिल्म से ये गीत। बोल इशात कामिल के हैं और संगीत प्रीतम का।

और जब शायरी महसूस होने लगे तो लबों पर एक ही लफ्ज आता है, मेहरबानी। सुनते हैं जुबिन नौटियाल की आवाज़ में द शौकीन फिल्म से ये गीत, गीतकार संगीतकार आरको मुखर्जी।

दोस्तों, इसी गीत के साथ गाने नए पुराने अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर 2:30 बजे फिर आपसे कंगला चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

इसे सितान जखे बगल लोई ना अरीब मतमी से खरदंग लांथोक चबा मतांगस्त लोई सिंजरी सैसखी बसिंग दी आहान बे सैदा अरीबम श्याम शर्मा अनिसुवे से की सैसखी बा हामोम नबा अहम सुवे सैदा नोंमाइथेम पहारी मरी सुवे सैदा फुराई लाटपम इबुयाइम शर्मा मंगा सुबदा लाल बापू थोरम संदोक्तुना तहन जरी बसी आकाशवाणी इम्फाल के एफ एम संगाई चैनल दगिनी।

सनाया पंबाल मैं ते सना पंबाल दूना नहीं वक़्त नहीं पीवाने या हनुमाई आई भां नुंदमली आई वो भी बाम वाप दी सिंगा कोई ना पंजाबा होना कोई ना पंगाचे आई मबू नंगी दमते अखुदो खुले कसेबू आई वो खुले खुद कलांजे बबू अभी भी बबू ही पियो सिंगी

0: ꯏꯁꯦ ꯁꯤꯇꯥꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯦ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ.
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाश बानी इम्फाल माइबम दिजमली नपाव बाजरी आहान बता मरोई बपाव आकाश बानी इम्फाल माइबम दिजमली नपाव बाजरी आहान बता मरोई बपाव मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हैरी जेल हाइबसी मराले बसिंगी लेफम खक ओइना खनबगी महुता मियोय अमगी लमचत छाजर थक्सी कासी अमदी अरानब कया सेमदोकनबा मफम अमस ओइरी मणिपुर सरकार की लैंड रिसोर्सेस विभाग की ओइना दाइन हार्नेस स्कीम की मखा द थब खल्लबा मियोय मरबुत्रा हमदोइदा मुख्यमंत्री लेंगसी ऑफर फॉर्म सिंग यंथोखरे मणिपुर मर्जर एग्रीमेंट सही तौनखिबबु यानिदब फोंदोकतुना राइजसेन बथुंगबा दकौखिबा अहिंग नोयाइदगी कौखिबा बन मखा सथरी T72 T90 टैंकसी ऑक्सिलरी पावर यूनिट लेने जेरोल गाक्सेल मंत्रालय एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड की मरक्तंगसी सही तौनखरे जापान की नागोया चथरीब एशियन गेम्स लिसंगनी की मेडल टेली चाइना सना की तकमान कुलुमदो पुनः तकमान कुंथ्रा तरह फंगदुना मेडल टेली की मकोक्त लेरी भारत ना लुपा की तकमान मरी सेंजें की अनी पुनः तकमान तरुक फंगदुना तरानिथोय सुब मफम लेरी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसान हैरी जेल हाइबसी मराले बसिंगी लेफम खक ओइना खनबगी महुता मियोय अमगी लमचत साजर थक्सी कासी अमदी अरानब कया सेमदोकनबा मफम अमसु ओइरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिजन्स ना सिंधुना मणिपुर सेंट्रल जेल इम्फाल द पांगथोकिबा मणिपुर द जेल लिंखटकिबगी साम कुथ्रा मरी सुब कुमोन थोरम अमसुंग प्रिजन्स एंड करेक्शनल डिपार्टमेंट लिंखटकिबगी अहानब कुमोन थोरम द मुख्यमंत्री ने मखा ताना हाई जेल हाइबसी आइन की ओइबा पथाफमनी हाइन लोगोसु याई सही साम कुथ्रा मरी सुरब जेल लिंखटकिबगी निंगसिंग थोरम पांगथोकपासी थागनिंगाइनी मुख्यमंत्री ने हाई जेल की इंफ्रास्ट्रक्चर असी मतम गसुनब ओइत्रे मतम सांगना जेल की अवार्ड स्टाफ सिंह लौरकतबना स्टाफ की अवार्ड पसु लेरी मसी के दमक ए डी जी पी का वाली सानदुना दरकार की मतुंग इना रिक्रूटमेंट सिंह सु पांगथोकनब खनरे मुख्यमंत्री ने हाई
1: जेल दे लेरीब खुदि मक्सी मरा लेब मिन नत्री अंतिम ने लेस मागी कन्विक्शन खुदि गई दी मोजे अंडर ट्रायल प्रिजनर नी जेल दे लेब मी खुदि मक मरा लेरब आइन काइन साइन पनी हाइना कुने लोब यारवाई मसी जेल से यामना सोसाइटी की मोरे रिफॉर्म तो गुम अमदी लोग योइब हक पथा ब बेहन लोग से जेल की इंफ्रास्ट्रक्चर सि मतंगा सानर बरो स्टाफ सु गिरे लम दव दरगाह लेबर रिक्वायरमेंट्स दो कर तो सी एट द सेम टाइम दाय हानिस स्कीम द दाय हानिस स्कीम लेबर सिम दो थागत पेरो
0: थोरमदुदा गृह मंत्री गोविंद दास कोंथौसम नहाई यामन मरुई ब विभाग म वरीब जेल लिंखट की बासी सही साम कुंथ्रा मरी मपुंग फरकले मसी लायोय खरब अहलमन सिंह अदुना यामन मरुई ब विभाग म ओइना थंबिरमी अदुबु करम ब मतम द जेल लिंखलमी हाइब निंगसिंग द बासी यामन लायब थिबनी माग नहाई गसी दी मरालै हाइदुना जेल ल थमजिल लगा तुमिने ले थोप याब मतम अदु ओइत्रे जेल की ओइब सन कानून कया सेमदुना लेरी मफम असिद असोइब अरानब सिंह सुमथोकनब मदी मियोय अमगी फंगफम थोकब सब साब हक पीनेबगी थबक थोरम सिंह तौरी बोंदी अमु बोतोंगानब मियेंग अमदी वाखलोंदा मियाम ने येंगलिब असी लेहेंदनब होनमिनसी श्री गोविंदास न हाई
2: जेल दल लेरीबा इसलिए नाउ इसाई सुसिंग से स्टाफ सिंग सो गनें थी जनता दबेरी अदुई मदकता अकुई ना मकुई बु हिंग हेक थोरो को मतम सिदा सोसाइटी सिदा मकुई बु स्टिग्मा आमा थम बसे मसी कोई दन्नबे कोई को नबे मतों ताकन परंतु मकुई सी मनुंग दगी फरग थोरो अब ओयम बसुई आये न तो माह की मतम लोरे थोरो पर ओयम सुई आये अकुई ना मकुई बु निंथी जनन लोई ना भी बाबे भारत उम मतम ने मकुई की अहू मसुई दन लाखे दी मकुई मतम लोरे का न तो पंपा मदद की मकुई या फब करेक्टर डिसिप्लिन फरग आंदा थोरो डे बका मुसी बे कोई न तरा
0: सरुक अयुक अंगन इम्फाल लेब मणिपुर सेंट्रल जेल किलोमीटर मंगा की लमजेल लमथाखी मणिपुर सरकार की लैंड रिसोर्सेस विभाग की दाइन हार्नेस स्कीम की मखा थब खलब मियोय मरबुद्रा हमदोई ऑफर फॉर्म सिंग यंथोखरे इम्फाल की मंत्री पुख्रीद लेब मणिपुर सिविल सेक्रेटोरेट की साउथ ब्लॉक तो लेब मेन कन्फ्रेंस हॉल तो पांगथोकिब थोरम मतुदा

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।
4: आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग नुमिदांगे पुंग मापल तारे मणिपुरी दपाव ताबिरशी।
5: आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी न पाव पाजरी। तमेंगलोंग जिला की तामई सब डिवीजन की मनुष्य न ले पाव ओल ताको विलेज दगी सही तरह तरेलोम सुरबरुपा मसामा खुलाई पाइबसिंग लंगसे आयु पुंग तरा मखायरोम ताबदा माके खुंगंगदगी तामई हेडक्वार्टर्स तमना मखोंगना चलिंगैदा नोंमैन काप्तुन हालमले। पुलिस की पाउन हाई सीरबनु पमसा अदु पुलिस अमसुंग आसाम राइफल्स ना खुंजासिंग अमदि CSO सिंग की मतेंग लोयन लोकलब मतुंगदा तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स द पुखरे ताको अमसुंग तामई सब डिविजनल हेडक्वार्टर असी किलोमीटर कुलोम लापनब मफम ओइबना खोंगना चटपदा पुंग ओमलोम संगबदुगा गारीना चटपदना पुंग अमरोम संगम मफम नि हाइरी। सही तरह तरेलोम तंगाइरी बनुपा मसा अम हालम बेगी थौदोक अदुबु अवांगबो नियुमाई MLA ना यामना कन्ननी दा तौख्रे सेरोलामदा श्री अवांगबो नियुमाई नि हाइ मसी मिसम मियामदा अतमनने सिंगनेबनी साउकरप समाज समगी मसत नते महागना अपर ताकौदगी मालेक फाउरगा तामई तमना मखोंगना चलिंगैदा खुलाई पाइबसिंग हाखिबनी। सही नौरी बनुपा मसा अम मिनुंसी खंगदन हालम बेगी थौदोक अदुबु जॉइंट ट्राइब स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना यामना कन्ना यालिंगदेबा फोंदोख्रे। थवोंग अदुबु वाकिंग कमिटी जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुरनासु यामना कन्ना यालिंगदेबा फोंदोख्रे लोइनना मारा लैबसिंग अथुबा मतमदे सेराकपीबा लैकिद्रबगी इमुंग मनुंगदा असुंबा वायल फंगनबा नागा खुलसिंगबु ngakpi सेनबिबे याउना दाबी मरी सरकार तक्सिलि। कोम्बीगी इथाई तुरेलदा सही कुंथ्रा तरुकलोम सुरबा मिओय अमा तासिनक्रे हाइबगी पाउ फंगबदगी फायर सर्विस अमसुंग NDRF की अपुनबा पर्सनल सिंगना मिओय अदु लौखनबा थिबियाबा थिरबा मतुंगदा मणिपुर फायर सर्विस की टीमना ngasi nungthil pung 4 minute yangkhairi thoida thawai yaudra bhaksang ngoina phangma ngamkhre mioy adu ngasi ayuk pung 9 taba matamda kumbigi ithai turelda tasinkhibani hairi lokalaba bhaksang adu mari mata da sinakhre। मणिपुर दा शांति अमसुंग तंगदु लेता बा हंजलनबगे लोकटप खोंगथांग सिगे मनुंग सन्ना आसाम राइफल्स ना राइज असिगे तोंगान तोंगान बा मियोय सिंग उनबगे थाबक लेपतला सथरी। आसाम राइफल्स ना युमनाम खनोगी वार्ड मेंबर माइबम गे प्रधान वारोय सिंग गे आंगनवाडी वर्कर सिंग अमदि राइज असिगे तोंगान तोंगान बा मफम सिंग गे भिलेज सिप सिंग उनदुना वरी वताई सानबगे थोरम पांगथोखी। वरी वताई सानबदुदा लमदमसिदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगा मियामगा लेलेबा मरी सेसेलनबा जाति कांगलुप अमगा अतोपा कांगलुप अमगा नुंसी जानना लेमिनहनबा शांति अमदि तंगदुलेताबा हंजिलहनबा होनबगी वाफम खनखी। अमरोमदा आसाम राइफल्स अमसुंग मणिपुर पुलिस की कांगबुना टेक्नोपल जिला की बॉर्डर पिलर नंबर 48 मनाक्तिगी PLA की कादरम फारे फारब मियो एदु पलेल पुलिस स्टेशन द मकाताब थबक लोकन बसि नखरे अतोब थौदोक अमदना इम्फाल वेस्ट की लमदेंग रोड थी भूमि की थब सथबदा बोल्ट एक्शन राइफल अनी पिस्तोल मापन लेथोट गन अमा हैंड ग्रेनेड अमा अमदी अतै पोलम कया मरुम फागर पंगमले। थौबाल पुलिस कमांडो मसुंग कुछ्रामाथोई सुबा आसाम राइफल्स की अपुन मकांगबुना इम्फाल ईस्ट जिला की अंद्रो एरियादा थी भूमि की थबक सथबदा KCP MFL की मियो अमा फारे फारब मियो एदु बिष्णुपुर जिला की कैनौ मोंखांग लेकाईदगी हैरी। मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम की चेरोल अमन हाई इम्फाल वेस्ट पुलिस की कांगबू अमना सगोलबन बिजोई गोविंद थोंखोंग असर अवोक्सिंग सेक तौबदा मियो अमदगी युंगौ लीटर 340 फारे फारब मियो अमसुंग युंगौ पुरप गारी एदु मकाताब थबक लोखनब एक्साइज डिपार्टमेंट सिनखरे। नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा पोसई थन यौरब गारी 340 सिक्योरिटी की अकन मंगाक्सल थौरांग लोइना इम्फाल तमन पुसिलखरे। प्रोफेसर कारनबला सरंग थेबु मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर ओइना खल्लै गवर्नर्स सेक्रेटरी ना थोक पचेरोल मनहाय महाक जॉइन तोबदिगी पारगा सही मंगा फमसी पुगनी। ꯁꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯂꯥꯌꯦꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯁꯅꯥ ꯏꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯡꯌꯥꯔ ꯍꯌꯥꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯨꯡꯌꯥꯔꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯗꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯛꯆꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯁꯅꯥ ꯏꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯚꯤꯛꯁꯤꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ 2027 ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ 56, ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ 40 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 116 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫
4: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯝꯐꯥꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯃꯔꯖꯤꯠ꯫
6: ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯁꯁꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯇꯤꯟꯁꯤꯠ ꯔꯣꯗꯇ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯔꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ,
7: ꯑꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ, ꯌꯦꯠꯂꯣꯝꯗꯅ ꯂꯕꯨꯛ ꯂꯝꯍꯥꯡ ꯐꯖ ꯐꯖꯔꯕ ꯑꯁꯪ ꯑꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ, ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯎꯖꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯈꯔ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯈꯔ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯐꯝꯕꯁꯨ ꯎꯏꯀꯣ,
6: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯅꯠꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ
7: ꯈꯔ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯁꯜꯂꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯅꯦꯕ, ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ
6: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯖꯒꯦ,
8: ꯂꯧꯀꯣꯔꯥꯛꯄꯝ ꯊꯣꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯣꯏꯕ,
6: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯂꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ?
8: ꯇꯣꯞ ꯌꯥꯔꯜ ꯏꯗꯨꯁꯤꯅꯤ,
7: ꯇꯣꯞ ꯌꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ
6: ꯌꯥꯔꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯧꯔꯦ, ꯆꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯏꯁꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯝꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯆꯥꯅ ꯐꯝꯃꯝꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ,
7: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜꯂꯝ ꯐꯥꯎꯔꯛꯏꯁꯦ, ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯋꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯣꯊꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯎꯕꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯑꯗꯣ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ,
8: ꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯤ, ꯁꯟ ꯁꯦꯜꯂꯤꯕꯅꯤ, ꯁꯟ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ, ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏ ꯎꯕꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯉꯥꯡꯉꯛꯎꯔꯕ,
6: ꯃꯤꯡ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ,
9: ꯀꯣꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯤꯂꯀꯃꯟ ꯗꯦꯕ ꯁꯔꯃ,
6: ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ?
9: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯞ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯝꯄꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯉꯦ, ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯟ ꯀꯣꯟꯖꯤꯟ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯟ ꯄꯆꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ,
6: ꯐꯔꯥꯝꯗꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯔꯕꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯝꯐꯝꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ,
9: ꯁꯤꯗꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯋꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯒꯕꯀꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯐꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ,
6: ꯁꯣꯝ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ?
10: ꯑꯩ ꯊꯤꯡꯕꯥꯏꯁꯨ ꯏꯕꯣꯜ ꯇꯣꯞ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ,
11: ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯨꯍꯦꯟ,
7: ꯀꯥꯏ ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯣ?
11: ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯝꯄꯨꯅꯤ,
10: ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯝꯄꯨꯗꯒꯤ
11: ꯖꯣꯟꯁꯟ,
7: ꯂꯩꯐꯝꯗꯤ?
11: ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯝꯄꯨꯅꯤ,
6: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ,
11: ꯂꯣꯛꯀ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ,
7: ꯂꯣꯛꯀ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯀꯣ, ꯍꯣꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ, ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ, ꯆꯍꯤꯗꯨ ꯃꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ,
8: ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤ,
7: ꯃꯧꯗ꯭ꯔꯥꯅꯤꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡꯁꯦꯀꯣ, ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯍꯣꯏ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ?
8: ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯣꯁ ꯃꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ, ꯄꯥꯔꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯌꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯒꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯩ ꯑꯩ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ, ꯕꯣꯜꯁꯨ ꯁꯦꯟꯅꯔꯝꯃꯤ, ꯊꯧꯕꯥꯡꯒ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯇꯥꯏꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯥꯂꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯣꯡꯒ ꯁꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯗ,
6: ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯠꯁꯪꯒ ꯑꯣꯏꯗꯨꯔꯥ?
8: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯁꯟ ꯄꯨꯁꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯝꯃꯤ,
7: ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯀꯣ, ꯃꯔꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯂꯥꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤ, ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ,
8: ꯑꯩ ꯈꯪꯒꯗꯧ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔ ꯈꯪꯗꯦ,
7: ꯌꯥꯏꯁꯀꯨꯟꯒ
8: ꯃꯤꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯊꯤꯖꯕ ꯁꯛꯐꯝ ꯀꯧꯖꯗꯦꯅꯤ
6: ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯇꯧꯕ,
8: ꯃꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯏꯁꯩ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ?
6: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯂꯩꯅꯤ ꯂꯩꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ,
8: ꯑꯦ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤ,
6: ꯌꯥꯏꯁꯀꯨꯟꯒ ꯃꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯅꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯇꯧꯕꯗꯣ,
8: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ,
6: ꯀꯧꯖꯗꯦꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ, ꯃꯈꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ,
8: ꯏꯪꯂꯕ ꯊꯃꯟꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯦꯗ,
7: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯁꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯀꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ, ꯏꯃꯥ ꯒꯝꯕꯤꯅꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯍꯤꯠꯇꯁꯨ ꯆꯟꯕ
8: ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ,
7: ꯕꯦꯖꯅꯤ
8: ꯒꯝꯕꯤꯅꯤꯗꯣ,
6: ꯃꯔꯤꯐꯨꯇꯔꯥ ꯁꯨꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥ ꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯀꯣ,
8: ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯤ, ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯒꯦꯅ ꯈꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯛꯄꯅꯤ, ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯟ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯒ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯩ

0: तुरी सब कोई ना सुम यार पार्ट की चिंग ना पोम्स डे थोको लग पड़ता को गाड़ी थोड़ो कुछ नहीं बाकी ना तो काम चल लीजिए गाड़ी जी काम चल लगा से इधा कोई की कपल जो माली हल्ल नहीं थे ना रिसे तुरी इसने तो हान तो हम भी होने
1: हाय
0: हाय इसी कई मिंग
2: कोई बा
1: आई मिंग संगीता तमोगी मोरंग थे या
3: I'm going to go to the house.
2: I'm not sure if you're a good person.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। चलो आज कहीं दूर चलते हैं, थामे हुए हरियाली की डोर, गांव की गलियों की ओर, जहां हवाओं से खुशबू आती है, जहां कोयल मीठा गीत सुनाती है। आज चलो कहीं दूर चलते हैं।

बहुत प्यारा लगने लगा है, है ना? चारों ओर हरियाली की चादर बिछ गई है, मानसून अपने पीछे छोड़ गया है यादों के सुहाने मंजर, घटाओं से रिमझिम की कहानियां, हवाओं से पेड़ों की अटखेलियां, ये सब यूं ही तो नहीं होता ना। संसार की हर छोटी बड़ी घटना, चाहे वो मौसम का बदलना हो, हमारा हंसना हो, रोना हो, या गाना, या फिर गुल और बुलबुल का मिलना, ये सब यूं ही तो नहीं होता। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गुल और बुलबुल की कहानियां सुनाता ये गीत फिल्म जब जब फूल खिले से आपके लिए।

एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों गीत गाते थे, प्यार भरी बातें करते थे। वैसे बातें तो प्यार भरी ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो जहनो दिल में मिश्री की तरह घुल जाती हैं, तो कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो नश्तर सी चुप जाती हैं। कुछ मोहब्बत भरी बातें दिल में ही रह जाती हैं, तो कुछ बातें इजहार बन के लबों पर आ जाती हैं, और कुछ बातें गीत बनकर धड़कनों पर बजने लगती हैं। कुछ ऐसी बातें फिल्म साथी के इस गीत में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम. कभी तुम भी नजर आओ सुबह से शाम तक हमको. बहुत से लोग मिलते हैं, निगाहों से गुजरते हैं, कोई आवाज तुम जैसी, कोई हम नाम तुम जैसा. बहुत बेचैन फिरते हैं, बहुत बेताब रहते हैं, मगर तुम ही नहीं मिलते, मगर

प्यार के पुकारने पर जब वो आ जाते हैं तो खिजाओं में भी बहार आ जाती है. उनसे आंखें चार होते ही दिल कह उठता है, रोग दिल को लगा गई आंखें, एक तमाशा दिखा गई आंखें. उसने देखा था किस नजर से मुझे, दिल में गोया समा गई आंखें.

ये आंखें, ये चेहरा, ये रूप का जलवा, अगर इनकी रोशनी, इनकी जलवा नुमाई ना होती तो ये दुनिया इतनी हसीन ना होती, ये जिंदगी मुस्कुराती नहीं। और कुछ ऐसा ही कह रहा है फिल्म बेटी बेटी का ये गीत।

इस गीत के साथ ही हर सिंगार यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिलहाल इस चैनल पर आइए जुड़ते हैं हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा के व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एकरूपता लाना है। ये दिशा निर्देश विकसित भारत 2047 के अंतर्गत 50,000 किलोमीटर लंबे नियंत्रित प्रवेश वाले हाई स्पीड कॉरिडोर विकसित करने की दीर्घकालिक योजना के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए 9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा सूखा प्रभावित इलाकों में 6 अमृत सरोवर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। कोलकाता में आज हुई समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये जानकारी दी। बैठक में सुंदरबन सहित तटीय इलाकों और उत्तर बंगाल के ठंडे पानी में मछली पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बस ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी शेयर या खास कंपनी के बारे में जानकारी नहीं देते हैं. हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 या फिर 2371-7106. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
1: नमस्कार पाठक जी, गुड इवनिंग निशित.
0: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार.
2: The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. The country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal.
0: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 500 अंक से अधिक उछला. निफ्टी 23,400 के ऊपर बंद हुआ. देश में इस वर्ष अगस्त महीने में 9 प्रमुख उद्योगों ने 4.8% की वृद्धि दर दर्ज की और भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले महीने की 20 तारीख से लागू हो जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का 100% निर्यात शुल्क मुक्त हो सकेगा.
2: Before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: Aur ab khabron ka silsila, pehle gharelu share bazaar. घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकों की अच्छी खासी खरीदारी से प्रमुख सूचकांक लाभ में रहे. हालांकि व्यापक बाजारों में यह तेजी नहीं बरकरार रही. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 564 अंक यानी 0.8% बढ़कर 74,859 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 23,414 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बिकवाली देखी गई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% घाटे में रहा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज हुई.
2: सो बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन द पॉजिटिव जोन टुडे. द सेंसेक्स सर्ज 564 पॉइंट्स और 0.8% टू क्लोज एट 74,859. The Nifty also gained 68 points or 0.3% to settle at 23,414. The broader market at the National Stock Exchange ended lower. The Nifty Mid-Cap 100 Index lost 0.3%, while the Nifty Small-Cap 100 Index edged down marginally. Earlier, the markets opened higher and maintained positive momentum throughout the session amid softer crude oil prices and global bond yields.
0: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 24 कंपनियों के शेयर आज लाभ के साथ बंद हुए. सबसे अधिक फायदा अल्ट्राटेक सीमेंट को हुआ, जिसमें 4.1% की वृद्धि हुई. एचसीएल टेक को 3.4% का और इंटरनल को 2.6% का लाभ हुआ. इसके विपरीत घाटा उठाने वालों में सबसे ऊपर भारतीय एयरटेल के शेयर रहे, जिसमें 1.9% की गिरावट हुई. पावर ग्रिड को 1.2% का और इंफोसिस को लगभग 1% का नुकसान हुआ.
2: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, realty increased 1.7%, consumer durables rose 1.6%, and healthcare added 1.1%. In contrast, telecommunication lost 1.6%, mid-small private banks equity tilt dropped 0.5%, and mid-small private banks fell 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,243 companies declined, 2,213 advanced, and 250 remained unchanged.
0: नजर डालने यदि रुपए पर तो रुपए में आज थोड़ी सी मजबूती आई है. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ, 95.82 रुपए पर बंद हुआ.
2: And we are joined in by our first caller from Mumbai.

0: Hi, Mukund. Mukund, welcome. Namaskar. सवाल
1: नमस्कार मुझे ये पूछना है सर जी एससी यानी कि सीनियर सिटीजन स्कीमिंग का अकाउंट अगर मैच्योर हो गया तो उसको कंटिन्यू करने में मैं कितने महीने तक की बात कर सकता हूँ वो वैल्यूबल रह सकता है 6 महीना 10 महीना यही 1 साल ये मुझे पता करना है आपसे
2: मुकुंद जी एक बार अपना सवाल दोबारा दोहरा पाएंगे
0: सिद्धार्थ जी मुकुंद जी ये पूछ रहे थे कि जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस वगैरह में गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कितने समय तक कितने टर्नर के लिए कर सकते हैं 6 महीने 8 महीने 10 महीने या साल भर के लिए ये प्रश्न था उनका
2: नहीं मुकुंद जी देखिए जहां तक सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम्स की बात है उस पर कोई ऐसा आपको प्रावधान नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक है आप उसको री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन समय रहते जरूर री इन्वेस्ट कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में जब वो मैच्योर हुआ हो तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है जब आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जरूर आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं लेकिन उस स्कीम में कोई इस तरह की रोक नहीं है कि समय की कोई पाबंदी नहीं है आप री इन्वेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन समय रहते कर दें खासकर जिस फाइनेंशियल ईयर में वो मैच्योर हुई है उसी दौरान कर दें
3: बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहें सिद्धार्थ जी तो कुल मिलाकर किन अर्थों में ले रहे कारोबार को लिवाली हुई है निफ्टी में थोड़ी कम रही और सेंसेक्स में भी कोई खास बड़ी लिवाली नहीं है लेकिन लिवाली का सिलसिला शुरू हो रहा है बाजार का कारोबारी सप्ताह के पहले दिन बढ़त के साथ बंद होना किन किन कारणों के से संभव हुआ है
2: नहीं देखिए मनोज जी मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में एक जो हमारा अपना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो तो बहुत अच्छे हैं जो भी डेटा हो चाहे वो आपका जीडीपी का डेटा हो इन्फ्लेशन थोड़ा चिंता का सबब बना है खासकर क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ज़्यादा हैं लेकिन जो अभी भी जो हमारी मार्केट्स में इंडियन मार्केट्स पे जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है खासकर जो युद्ध अमेरिका और ईरान का युद्ध है और क्रूड ऑयल की उसकी वजह से जो तेल की कीमतों में जो तेज़ी है और दूसरा भी आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रशिया यूक्रेन अभी भी कहीं जो युद्ध चल रहा है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है साथ साथ अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे अमेरिका और चीन दोनों के राष्ट्रपतियों की एक बड़ी बैठक होनी है 23 तारीख को तो उसके लिए भी जो तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से तो मुझे लगता है एक वो बड़ा कारण है लेकिन जो मार्केट में आज तेजी मुझे लगता है लोगों में एक विश्वास आत्मविश्वास थोड़ा लौटा हुआ क्योंकि थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए हैं अमेरिका में भी जो रेट हाइक होना था जिसको लेके एक बाजार में एक प्रेशर बना हुआ था कि रेट हाइक होगा तो उसके बाद एफआईआईज का क्या रिएक्शन होगा तो आज अच्छी बात यह है कि आज की मार्केट में एफआईआईज ने भी खरीदारी की है तो और डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनका विश्वास और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी विश्वास भारतीय बाजारों में है तो मुझे लगता है सप्ताह की शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और कहीं ना कहीं मुझे ये मोमेंटम बना रहेगा ये थोड़ा अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ये प्रेशर एक जो बाहरी जो भी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं उनका प्रेशर इंडियन मार्केट्स पे अभी भी है
3: जी आइए चलें मुंबई से ही आमंत्रित करें रत्नाकर जी को रत्नाकर जी स्वागत है आपका सवाल पूछिए
4: हेलो गुड इवनिंग सर यही सवाल था कि इसके बावजूद अमेरिका का जो 100% टैक्सेशन है तो उसके बावजूद भी आज मार्केट 6 अंश बढ़ गया तो उसका एक रीजन क्या हो सकता है और ये जो बढ़ने का सिलसिला आगे भी चालू रहेगा क्या तो दूसरा सवाल है कि आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के क्या मायने रखते हैं थैंक यू
2: देखिए रत्नाकर जी जहाँ तक आपने अमेरिका के वो जो अमेरिका में जो बिल पास हुआ है जो नया कानून आया है कि 100% टैरिफ लगा देंगे उन देशों पे जो रूस से तेल खरीदेंगे तो अभी ट्रंप साहब ने उस पर रजामंदी जरूर दे दी है लेकिन अभी उस पर आगे उन्होंने कोई कार्रवाई निश्चित नहीं की है कि क्या किन देशों पर लगेगा कितना लगेगा तो अभी तक वो स्थिति क्लियर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमारी बाजार ने आज जो रिएक्शन था उसका कोई उसकी किसी वजह से था हाँ ये जरूर है कि अमेरिकन बाजारों में जो वहां पे बॉन्ड डील्स हाई थी वहां की महंगाई को लेके वो थोड़ा नरम पड़ी है साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं उनमें भी नरमी आई तो कहीं ना कहीं बाजार में उसकी वजह से आज तेजी हमने देखी और आपका एक और सवाल था
3: आईटी सेक्टर का?
2: आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर पे मैं तो यही बोलूंगा कि मैं आज भी बुलिश हूं इंडियन आईटी सेक्टर पे, और आईटी जो शेयर्स हैं उनकी काफी पिटाई हो चुकी है। और मुझे लगता है जैसा आप सुन भी रहे होंगे देख भी रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी दुनिया में बात हो रही है, लेकिन उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उसको लेके भी अब बातचीत शुरू हो गई है। और दुनिया में जो जो बड़े देश जो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो अग्रणी देश हैं, खासकर अमेरिका और चीन के बीच में भी जो उनके राष्ट्रपतियों की बात होनी है, उसमें एक बड़ा विषय यही होने वाला है। तो मुझे लगता है कि और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आईटी कंपनीज अभी भी अच्छी हैं, रोबस्ट हैं और अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रही हैं। तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसमें निवेश करें, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़े थोड़ा निवेश करें।
0: नेक्स्ट कॉलर इज सुभाष फ्रॉम फरीदाबाद। सुभाष
5: नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहता था कि ये आज की मार्केट का जो बढ़त हुई है उसका क्या रीजन हो सकता है? और दूसरा सर मैंने आईटीआर भरा था और मुझे रिफंड भी मिल गया है सर, तो इसका मैं मान लू क्या कि मेरा आईटीआर प्रोसेस हो गया?
2: नहीं, आपको रिफंड मिल गया है या नहीं मिला आपने?
5: रिफंड मिल गया है सर मुझे, सब कुछ मेरे पास अकाउंट में आ गया है, मेरे क्रेडिट हो गया।
2: नहीं देखिए, तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ब्रॉडली ये मान लिया जाए कि जो भी आपने अपनी डिक्लेरेशन की है अपने आईटीआर में, तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने उसको मान लिया है। और साथ साथ वो एक जब भी आपका आईटीआर प्रोसेस होता है तो एक आपको मैसेज भी आया होगा, तो आप उस पर भी ध्यान दें। बट अगर आपको रिफंड मिल गया है तो ये आप निश्चिंत रहें कि आपके तरफ से जो भी आपने आईटीआर में डिक्लेरेशन की है अपनी इनकम की, उसको डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा। और दूसरा सवाल आपने जो पूछा था मार्केट आज के ऊपर थी, उसके ऊपर अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि चूंकि आज अमेरिकी बाजारों में और जो बॉन्ड डील्स हैं या हिंदुस्तान में भी जो बॉन्ड डील्स हैं उनमें थोड़ी नरमी आई है, कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में बने हुए उसकी वजह से जो उनमें तेजी थी जो $100 का, तो वो भी थोड़ा नरमी आई है, वहां भी $100 के आसपास कीमतें आई हैं। तो जो इमीडिएट रीजन वो यही दो कारण जो लगते हैं। और तीसरा मुझे लगता है चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो काफी सुदृढ़ हैं, तो ये बेसिक कारण थे जो आज बाजार में हमने तेजी देखी।
3: श्रोताओं, आपसे एक आग्रह है कि जिस समय आप हमसे सवाल पूछते हैं उस समय फोन लाइन पर आप जुड़े होते हैं तो रेडियो की आवाज धीमी कर लीजिए, वरना आपके रेडियो की आवाज हम तक इको के रूप में पहुंचते रहती है, जो आपकी आवाज सुनने में, सवालों को सुनने में थोड़ी सी मुश्किलें ले आ सकती है।
0: कंटिन्यूइंग सिद्धार्थ विद द मार्केट conditions today, and talking of Fed, of course we saw 25 basis point kind of upward tick in the last Fed meet. There are also murmurs, talks of another kind of uptick in the coming month, that is October. This is one, and of course we discussed, you know, in the opening section that US is kind of, we see that it's cozying up to China. It has led out, you know, the red carpet for the Chinese president. And the third, of course, Mr. Trump also kind of making statements, though in a very subtle way, that the US-Iran skirmish is kind of entering the last phase. He would be taking some final decision in the coming days. How do you see all this thing, these three kind of big news in totality affecting the market in the coming days?
2: See, Nishit, I think the origin of all the three points that you raised is not within our macroeconomic setup. So basically, coming to your question of Fed rate hike, I think everybody is factoring in another rate hike of 25 basis points, yes. By Fed. And I think also there is now a greater possibility of our own central bank also in the next monetary policy, which is early October. They may also may also go for tightening, and because inflation has been inching month after month, obviously basically because of the high crude oil prices. So might have a rate hike in India also. And the fact that the US and China are trying to, you know, work together, I think yes, because US has its own interest of trade, you know, attracting their own trade, selling their own agriculture produce to China, plus they're also expecting huge investments. So I think these are two big factors. Plus, I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence. Mm-hmm. Because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software or whatever the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. Mm. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are 2-3 major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
3: آئیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں شوتاؤ آپ کو لیے چلتے ہیں ویشوک بازاروں کی سب سے پہلے ایشیائی شیئر بازار جہاں خریداری اچھی خاصی ہونے سے دکشن کوریا کا کوسپی 1.7% لابھ میں رہا ادھر جاپان میں سارجنک اوکاش کے کارن شیئر بازار بند رہا یدی ہم آج کے ایشیائی بازاروں پر دھیان دیں تو لگ بھگ ہر جگہ اچھی خاصی خریداری رہی ہے کیا رخ درشا رہا بازار میں یعنی وشواس یورپ میں بھی اور ایشیائی بازار میں بھی اور بھارت میں اپنے ہاں بھی تیزی ہے تو کوئی خاص وجہ
2: منوج جی مجھے لگتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دی پرائمری ریزن خاص کر ایشین مارکیٹ جیسا کہ آپ نے کہا کوسپی میں جاپان میں تو مجھے لگتا ہے اٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جو پیچھے سے جو امریکہ اور چین کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں بھی یہ بات سامنے نکل کے آ رہی ہے جو کہ دونوں کے بیچ میں امریکہ اور چین کے بیچ میں جو ٹریڈ انویسٹمنٹ جو ان کے ایشوز ہیں ویاپار کو لے کے نویش کو لے کے اور ساتھ ایگریکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے جو امریکہ ہمیشہ کہ ان کے جو بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کانسیپٹس ہیں ان کو چوری کر رہا ہے چین تو اس پہ مجھے لگتا ہے کسی طرح کی رضامندی بنتی ہوئی لگ رہی ہے تو یہی مجھے لگتا ہے کارن ہے تیزی کے
3: جی دلی سے ہمارے ساتھ اس بیچ فون لائن پر جڑ چکے ہیں اویناش سواگت ہے آپ کا اویناش جی سوال پوچھیے
6: نمسکار مارکیٹ منتر ٹیم کو نمسکار میرا
3: جی نمستے
6: میں ہاں دو کوشچن ہے ایکچولی اگر ہم انڈین روپیز سے USDT مطلب کرپٹو اگر خریدتے ہیں مطلب کرپٹو کرنسی تو ہمیں ٹی ڈی ایس دینا ہوا گیا اور اگر کرپٹو کرنسی سے بعد میں ہم جیسے اور کوئی مطلب پرچیز کریں اپنا کرپٹو جیسے نیکسا وغیرہ ہو گیا تو اس پہ بھی ہم کو ہمارا ٹی ڈی ایس لگے گا نہیں لگے گا اور کتنے ٹائم میں ہم کو یہ ٹی ڈی ایس جمع کرنا ہوگا یہ جاننا تھا پلیز
2: نہیں اویناش جی دیکھیے جہاں تک آپ کے کرپٹو کرنسی کا جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے اس کو آپ کو اپنے انکم یا جو بھی آپ کی اس سے انکم ہوگی جو بھی آپ کو منافع ہوگا یا گھاٹا ہوگا جو بھی آپ کی ویلیو اس کی نکلتی ہے اس کو آپ کو اپنے آئی ٹی آر میں درشانا ہوگا اور اب آپ کو اس کی ڈکلیریشن کرنی ہوگی ایسا کوئی ٹی ڈی ایس دینا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں اس سے اگر آپ کو کوئی بھی انکم اگر اس جس بھی کاروباری سال میں آپ وہ کرتے ہیں ٹرانزیکشن تو اس کو آپ کو اپنے جو انکم ٹیکس کا جو بھی آپ ڈکلیریشن کریں گے انکم ٹیکس جو فارم بھریں گے اینول تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں اس کی جانکاری ضرور دینی ہوگی
0: رائٹ نیکسٹ کالر از روی نارائن فرام بھلائی ویلکم
3: روی جی آپ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھلائی سے آپ کا سواگت ہے سوال پوچھیے
7: نمستے مارکیٹ منترا
3: نمستے
7: میرا کوشچن ہے کہ یہ ایف آئی آئی جو ہے اس مہینے جو ہے 71,000 crore روپے کچھ تو بتا رہے تھے اس کا جو ہے وڈرا کر لیے ہیں ایسے ہی لگاتار وڈرا کرتے جا رہے ہیں اور ڈی آئی آئی جو ہے اور جو انڈیویجلس ہیں وہ سب ایس آئی پی کے کارن سے جو ہے وہ آف سیٹ ہو رہا ہے کمپنسیٹ ہو رہا کر کے وہاں سے تو ٹھیک ہے اس کا ہمارے اکنامی میں ڈائریکٹ کیا امپیکٹ آئے گا کیونکہ یہ تو نویش تو کمپنی میں ہو رہا ہے اور کمپنی کا پرفارمنس جو ہے وہ جو ہے ہماری اکنامی کو سدھڑ یا ویک کرے گا تو اس کا ڈائریکٹ اکنامی سے کیا ریلیشن شپ ہے یہ جاننا چاہ رہا ہوں تھینک یو
2: نہیں دیکھیے روی نارائن جی جو آپ کا سوال ہے یہ بالکل صحیح ہے پچھلے 2-2.5 سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار جو فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں جن کو ہم ودیشی نویشک بولتے ہیں موٹے طور پہ وہ بھارتی بازاروں سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں حالانکہ پیچھے جو بانڈز میں جو ہم نے ٹیکس کچھ ایگزمپشنز دیے تھے ان کو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بانڈ مارکیٹ میں ضرور نویش ایف آئی آئی اس کا بڑھا تھا لیکن دیکھیے ایک مول بھوت जो उनका जो उनका सिद्धांत है निवेश का FII इसका, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। तो जब अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि अगर वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, उनकी बाजार भी अच्छी कर रही है साथ साथ, जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाजार हैं, एशिया की बाजार हैं, चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो, वहां पे भी वो जो बाजार हैं वो अच्छा कर रही हैं। तो वो शायद इसलिए उनको लगता है कि उनको इस समय पे वहां निवेश करके ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, तो इसलिए वो जा रहे हैं। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के पे कोई कोई प्रश्न लग रहा हो या उस पर कोई खराब उसका इम्पैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बिल्कुल सुदृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं।
0: राइट, एंड some other stories, the combined index of core industries ICI recorded cumulative growth of 4.8% year on year in August. This is slightly less than the downwardly revised growth rate of 5% recorded in July. According to provisional estimates released by the Ministry of Commerce and Industry today, 5 out of 9 core sectors recorded positive growth last month. Among these, cement production grew by 12.5%, electricity generated increased by 11.6%, iron ore production rose by 5.5%, steel production increased by 3.4%, and refinery products output rose by 2.6% on an annual basis. On the other hand, fertilizer production declined by 12.4%, natural gas production dipped by 4.9%, coal production decelerated by 3.8%, and crude oil production dropped by 3.6% in August, year on year basis.
3: दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं केशव। केशव जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
8: नमस्कार।
3: नमस्ते।
8: एक्सपर्ट से मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मार्केट में गोल्ड मिलता है वो होता है पीले रंग का, उसका रेट बता दिया जाता है, और मार्केट में भी व्हाइट गोल्ड मिलता है, उसके एक गोल्ड और होता कलर उसका पिंक होता है, क्या इनके रेट कुछ बताते हैं? व्हाइट वाले का और येलो से महंगा होता है, पिंक वाले का भी अलग रेट होता है, इसके बारे में कुछ रेट के बारे में बता पाएंगे कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है?
2: नहीं केशव जी, देखिए जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो गोल्ड का एक ही रंग या जो ट्रेड होता है गोल्ड, वो वही होता है जो येलो गोल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बाजार में एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गोल्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो पिंक गोल्ड या जो भी इस तरह के कुछ होंगे जो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी आपको सलाह यही होगी कि आप जो येलो गोल्ड, और खासकर कोशिश करें कि किसी रजिस्टर्ड सेलर से ही खरीदें।
0: An India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
9: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes. It is an important moment for our businesses, for our farmers, for our exporters and MSMEs, for our professionals and consumers who will all benefit from the commitments undertaken in this agreement, and also facilitates significant investments of $20 billion over the next 15 years from New Zealand to India.
0: And India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, SEPA, with the next round of talks set to commence on the 5th of October. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. And on the Lindsey O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Piyush Goyal said that more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time.
3: स्पीच हमारे साथ फरीदाबाद से रंजन जी आ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका रंजन, सवाल पूछिए।
10: नमस्ते। नमस्ते सर। सर ये इसके बारे में बताएंगे, फेड ने रेट बढ़ाए हैं, रिजर्व बैंक बढ़ाएगा जरूर, मेरे ख्याल से बढ़ाएगा, आपके ख्याल से भी क्या विचार है, बढ़ाएगा जरूर, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, और उसका प्रभाव इक्विटी पे, मार्केट पे, शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा, और मुख्य तौर पे बैंकिंग सेक्टर पे, पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके डिपॉजिट रेज होंगे या इनके शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बता सकते हैं?
2: नहीं देखिए रंजीत जी, जैसा कि आपको पता ही है फेड ने रेट इंक्रीज किए हैं और हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि महंगाई दर लगातार महंगाई बढ़ रही है तो शायद उसको कंटेन करने के लिए हमारे यहाँ भी कुछ 25% तक जो है रेट हाइक अक्टूबर की पॉलिसी में आरबीआई कर सकता है। और जहां तक उसके निगेटिव इम्पैक्ट का, मुझे नहीं लगता 25 बेसिस पॉइंट्स का कोई बहुत ज़्यादा बाजार पर कोई बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होगा। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि शायद आप अगर बैंकों में डिपॉजिट्स करते हो तो कुछ डिपॉजिट रेट आपको थोड़ा डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इजाफा हो, हालांकि मेरा ये मानना है इस समय लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो डिपॉजिट रेट भी इस समय बढ़ेंगे मुझे ऐसा लगता नहीं।
3: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR फ्रेमवर्क अगले महीने की 15 तारीख से लागू हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन पर ₹2000 तक का लेन देन मुफ्त रहेगा। इस पर कोई MDR चार्ज लागू नहीं होगा। श्रोताओं आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि MDR को आखिरकार क्यों लागू किया जा रहा है। दरअसल

0: यूपीआई के तहत बड़े पैमाने पर हर महीने धन का लेन देन हो रहा है। उदाहरण के लिए पिछले महीने यूपीआई के माध्यम से लोगों ने 2400 करोड़ से अधिक बार यूपीआई का उपयोग करते हुए 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लेन देन किया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने कहा है कि एमडीआर से प्राप्त राजस्व का उपयोग यूपीआई इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इसके भागीदारों के साथ किया जाएगा, ताकि इसके ढांचे में नवाचार, स्थिरता, साइबर सिक्योरिटी और उपभोक्ता सेवा को बेहतर बनाया जा सके। सरकार से प्राप्त वार्षिक सब्सिडी से संबंधित पक्ष को रखते हुए एनपीसीआई ने कहा कि ये व्यवस्था लघु अवधि फंडिंग के लिए की गई है। हमारे साथ इस बीच दिल्ली से रजत जी आ चुके हैं। रजत जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए।
1: नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका मोबाइल ऐप, कई मोबाइल ऐप्स हैं जो सिल्वर में और गोल्ड में इन्वेस्ट करती हैं, इसमें क्या आप हैं गुल्लक करके एक ऐप है जो वेक्ली टेक्स द फॉर द सिल्वर एंड गोल्ड, सो हाउ सेफ आर दीज एप्लीकेशन टू इन्वेस्ट एंड परचेज।
2: नहीं देखिए रजत जी, जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए अगर वो सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ऐप है तो अगर उससे रजिस्टर्ड है तो वो उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट की जो दुनिया है उस पर धोखाधड़ी बहुत ज्यादा है। तो मेरी सलाह होगी कि बहुत ध्यान से, सावधानी से करें जो भी करें।
3: Moving on to crude, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.5% down at $101.26 per barrel in the intraday trade at the time of writing this report. Meanwhile, the West Texas Intermediate crude was also trading 2.5% lower at $97.75 per barrel.
0: भारतीय सर्राफा आभूषण निर्माता संघ के आंकड़ों के अनुसार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.2% घटकर 153,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 2,34,992 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दोनों को भी धन्यवाद।
3: Thank you so very much, Siddharth. And before we close, a reminder of the headlines. The benchmark domestic indices end with gains. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 23,400. Country's core industries register growth of 4.8% in August this year. An India-New Zealand free trade agreement to come into force on the 20th of next month. 100% of the country's exports to get duty-free access, says Union Minister Piyush Goyal. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

0: चांद के पीछे भाग रहा हूँ, मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे।
1: एक बात बताइए।
2: क्या?
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
2: सपनों में देखा होगा।
1: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूँ।

अनुपमा फिल्म का ये गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना। इससे पहले आप सुन रहे थे आह फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आइए अब सुनते हैं फिल्म अनारी का गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

गीतादत्त और मोहम्मद रफी के गाए फिल्म सीआईडी के इसी गीत के साथ ही हरसिंगार यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। राखी आ गई हैं स्टूडियो में आगे का कार्यक्रम लेकर राखी आ गई हैं, लेकिन कुसुम को अब दीजिए इजाजत, जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होगी ताकि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे। कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। अगले महीने की 29 तारीख तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashami. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry yesterday signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The contract was signed in presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh. Accurate Industrial Controls Private Limited is an Indian engineering and manufacturing firm based in Pune, Maharashtra. The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of high-speed access-controlled national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines will apply to all upcoming 4- and 6-lane greenfield and brownfield high-speed access-controlled national highways. The guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation of detailed project reports of high-speed national highways corridors. President Draupadi Murmu arrived on a 3-day visit to Gujarat yesterday. The president will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia today. Marking a historic shift, the Ministry of Information and Broadcasting takes the nation's highest film honours beyond the capital to celebrate India's cinematic diversity under the spirit of Ek Bharat, Shreshtha Bharat. The Election Commission plans to increase the number of tribunals in West Bengal to ensure speedy disposal of applications from people whose names have been excluded from the electoral rolls during the SIR process. The state currently has 19 tribunals. Our correspondent reports the commission is expected to tell the Supreme Court today that the number should be increased to at least 42, with one tribunal for each Lok Sabha constituency in the state. The Supreme Court is scheduled to hear 13 petitions today relating to the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls. The commission is likely to apprise the court of the need for more tribunals during the hearing. In Asian Games, Shooting India has won 3 medals in Aichi, Nagoya, Japan yesterday. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver medal while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver medal in the men's team event of the same competition. The trio of Rudraksh, Balasaheb Patil, Himanshu Dhillon and Parth Rakesh Mane came second in 10-meter air rifle team event. In mixed martial arts, Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60 kg category. In the medal tally, India is currently in the 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the medal-winning team. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

कभी किसी की एक झलक दिल को यूं छू जाती है कि नजरें ठहर जाती हैं और दिल बस उस चेहरे को निहारते रहने की ख्वाहिश रखता है। हुस्न जब पर्दे में हो तो उसकी कशिश और भी बढ़ जाती है और फिर दिल की यही गुजारिश होती है, रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर। मेरे हुजूर फिल्म का आपने गाना सुना रफी की आवाज में, हजरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें समझने के लिए तर्क नहीं बस दिल की जरूरत होती है और जब यही दिल किसी की याद में धड़कने लगे तो उसकी हर धड़कन एक ही बात कहती है ये दिल तो दीवाना है इश्क पर जोर नहीं फिल्म से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और रफी की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने

नजरों का भी अपना एक खेल है सामने कोई हो और बीच में एक पर्दा तो बेचैनी और बढ़ जाती है दिल चाहता है कि ये दूरी ये रुकावट जरा हटे और सामने वाले का दीदार हो जाए महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय

बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 12 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

इस खूबसूरत गीत की कल्पना में आने वाले कल की एक ऐसी तस्वीर है जहां आसमान सितारों से सजा हो, सावन की फुहारें मन को भिगो रही हो और जिंदगी किसी हसीन सपने की तरह महसूस हो। उम्मीद, प्यार और साथ से बुना ये गीत जैसे कहता है कि जब अपना कोई साथ हो तो साधारण सी जिंदगी भी एक खूबसूरत सपना बन जाती है। जीवन मृत्यु फिल्म का गीत आपने सुना रफी और लता की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो आंखें भी उसके उजाले से रोशन हो जाती हैं और फिर दिल यही ख्वाहिश करता है कि उस खूबसूरत एहसास की लौ कभी ना बुझे। अनुराग फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 47 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मोहब्बत में साथ निभाने का वादा जब दिल से किया जाए तो हर दूरी छोटी लगने लगती है कुछ ऐसे ही अटूट भरोसे और साथ की बात करता है ये अगला गीत जो आप सुनने जा रहे हैं जहां दो दिल एक दूसरे से जुदा ना होने की कसम लेते हैं

कुछ रिश्ते सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं होते बल्कि उम्र भर एक दूसरे का हाथ थामे रहने का वादा होते हैं जहां मोहब्बत में कोई फासला मायने नहीं रखता बस एक ही यकीन दिल में रहता है कि हम कभी जुदा नहीं होंगे तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने

गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में. कवि नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने. वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 18 सेकंड. आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार. समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ. फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीति साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार की विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने iStem पोर्टल को लेकर राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और सार्वजनिक धन से तैयार वैज्ञानिक सुविधाओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना था। बैठक की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की वैज्ञानिक सचिव डॉ परविंदर मैनी ने की। इसमें 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
2: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry yesterday signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The contract was signed in presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh. Accurate Industrial Controls Private Limited is an Indian engineering and manufacturing firm based in Pune, Maharashtra. The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of highways.

वक्त हुआ है 1:10 और वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

कभी-कभी मोहब्बत के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती एक नजर एक मुस्कान और कुछ अनकहे इशारे ही दिल तक पहुंच जाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और रफी की आवाज में एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने

कभी किसी को अपने ख्वाबों में देखा हो और फिर वही शख्स हकीकत बनकर सामने आ जाए तो दिल की खुशी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जहां महबूब को देखकर लगता है जैसे बरसों पहले दिल ने जिसकी तस्वीर बनाई थी आज वही सामने आ खड़ी हुई है। हिमालय की गोद में फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

जब दिल में मोहब्बत पहली बार दस्तक देती है तो रातें भी छोटी लगने लगती हैं और नींद आंखों से जैसे रूठ सी जाती है। दिल में हजारों सवाल उठते हैं और हर सवाल का जवाब बस आने वाला वक्त जानता है। हरियाली और रास्ता फिल्म से आपने ये गीत सुना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: कुछ मुलाकातें खत्म होकर भी खत्म नहीं होती, उनकी याद दिल में एक अगली मुलाकात की उम्मीद लगा देती है। इसी मीठे इंतजार और फिर मिलने की चाहत को इस खूबसूरत गीत ने आवाज दी। 20 साल बाद फिल्म का गीत आपने सुना, माफ कीजिएगा, ये रात फिर ना आएगी फिल्म का ये गीत आपने सुना रफी और आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा SH बिहारी ने और संगीत दिया OP नैयर ने।
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

जाने वाले को रोक लेने की वो मासूम सी कोशिश, जब दिल अपनी बेचैनी को शब्दों में कह देता है। मोहब्बत में कभी कभी एक छोटी सी गुजारिश भी बहुत कुछ कह जाती है, बस लौट आने की आस और साथ बने रहने की चाह। 20 साल बाद फिल्म का ये गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

याद जब किसी खास शख्स की आए तो मौसम भी जैसे उसी के नाम का हो जाता है बहार झूमती है लेकिन दिल को तलाश रहती है उस आवाज की जो दूर होकर भी बहुत करीब महसूस होती है पतिता फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में

मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्रों और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 56 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। जब दिन भर की भागदौड़ थम जाती है और खामोशी धीरे धीरे चारों ओर उतरने लगती है, तब दिल को बस एक ऐसे साथी की तलाश होती है जो बिना कुछ कहे मन की बात समझ ले। ऐसे ही नर्म सुकून भरी रात में पुराने फिल्मी गीत यादों की खिड़की खोलते हैं और हमें अपने साथ उन खूबसूरत पलों में ले जाते हैं जहां बस संगीत है, एहसास है और दिल की हल्की सी धड़कन।

कभी-कभी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं चाहिए होता बस सिर छुपाने को थोड़ी सी जमीन सपनों को छूने को थोड़ा सा आसमान और तिनकों से बना एक छोटा सा आशियाना जहां अपनेपन की गर्माहट हो और सुकून से भरी सांसें सितारा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने

मासूम सी शरारत प्यार से भरी हुई कल्पना और अपने प्रिय के लिए कुछ कर गुजरने का मीठा सा एहसास इसी भावनाओं को समेटे था ये प्यारा सा खूबसूरत गीत नमकीन फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में आरडी बर्मन ने दिया संगीत और इस गीत को लिखा गुलजार ने

रात की खामोशी जब धीरे धीरे अपनी आगोश में सब कुछ समेट लेती है तो लगता है जैसे चांदनी भी ठहर गई हो और आसमान ने भी आंखें मूंद ली हो। ऐसी ही एक शांत सुहानी रात और उसमें घुली एक बेहद खूबसूरत धुन, नीला आसमान सो गया। सिलसिला फिल्म का ये गाना आपने सुना अमिताभ बच्चन की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बीते हुए लम्हों की यही तो खूबसूरती है वक्त आगे बढ़ जाता है मगर यादें वहीं ठहर जाती हैं कोई पुरानी बात कोई चेहरा कोई मुलाकात और अचानक गुजरा हुआ कल फिर से आंखों के सामने आ जाता है बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी भूपिंदर की आवाज में इसे लिखा बहार नवाज ने और संगीत दिया खयाम ने

कुछ रिश्ते जिंदगी में इस तरह शामिल हो जाते हैं कि उनकी मौजूदगी अलग अपने आप से महसूस होती ही नहीं। वो हमारी हर खुशी, हर एहसास और हर पल का हिस्सा बन जाते हैं। आप तो ऐसे न थे। फिल्म का ये गीत आपने सुना रफी की आवाज में, निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये नज़्म सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में. इसे लिखा अमीर मीनाई ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 13 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है। ये अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉ. सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया। अमरीकी वाणिज्य विभाग ने भारत से आयात होने वाले वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप की जांच में प्रारंभिक फैसले की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले फैसला 8 अक्टूबर तक आना था, जिसे अब बढ़ाकर 14 दिसंबर तक कर दिया गया है। इस जांच में तुर्की से होने वाला आयात भी शामिल है। अमरीका ये पता लगा रहा है कि क्या भारत और तुर्की के उत्पादकों को उनकी सरकारों से सब्सिडी या वित्तीय मदद मिली है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand Free Trade Agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O'Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Chief Electoral Officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. The CEO office has published the list of electors who have been issued notices during the special intensive revision of electoral rolls, along with the reasons for issuing the notices. It has clarified that issuance of notice does not mean that the name of an elector will be deleted from the electoral roll. The Election Commission plans to increase the number of tribunals in West Bengal to ensure speedy disposal of applications from people whose names have been excluded from the electoral rolls during the SIR process. The state currently has 19 tribunals. Our correspondent reports, the commission is expected to tell the Supreme Court today that the number should be increased to at least 42, with one tribunal for each Lok Sabha constituency in the state. The Supreme Court is scheduled to hear 13 petitions today relating to the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls. The commission is likely to apprise the court of the need for more tribunals during the hearing. The Department of Drinking Water and Sanitation yesterday held the first national virtual conference with states and union territories. The conference was held to strengthen the skilled workforce needed for the operation and maintenance of rural drinking water systems under Jal Jeevan Mission 2.0. The Jal Shakti Ministry said that the conference focused on rolling out the Nal Jal Mitra program, which will train village-level technicians in operating and maintaining water supply infrastructure. The program includes a 510-hour short-term course and a 120-hour recognition of prior learning pathway. In Asian Games shooting, India has won 3 medals in Aichi, Nagoya, Japan yesterday. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver medal, while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver medal in the men's team event of the same competition. The trio of Rudraksh Balasaheb Patil, Himanshu Dhillon and Parth Rakesh Mane came second in 10-meter air rifle team event. In the mixed martial arts, Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60kg category. In the medal tally, India is currently in 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have congratulated the medal-winning team. And that is the end of this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हमराही।

रात के 3:11 और 16 सेकंड हुए हैं। हमराही कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, काफी दिन बाद आपसे गुफ्तगू करने हम फिर से आ गए हैं और हम भी उदास हो जाते हैं अगर आपसे ज्यादा दिन तक बातचीत ना हो। और दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? फासले मिट गए तो ये जाना, फासले मिट गए तो ये जाना, वक्त लगता है अपनों को पाने में।

मैं नेहरू दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म राम लखन से अभी आपने ये गीत सुना। खुली आंखों से देखा था जो सपना कभी, खुली आंखों से देखा था जो सपना कभी, वो आज मेरी तकदीर बन गया। तेरे होने से मेरा ये जिंदगी का सफर एक खूबसूरत तस्वीर बन गया।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म बरसात की एक रात से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जब हम किसी को चाहते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये बंजर दिल फूलों की तरह खिल गया हो और चेहरा खुशी से सरोबार हो जाता है। फिर चाहे ये खता हो या फिर सजा, दोनों ही अच्छा लगता है।

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म छोटी सी मुलाकात से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।
1: जब जब

वो वादा ही क्या जो आसानी से टूट जाए, वो वादा ही क्या जो आसानी से टूट जाए, वो हाथ ही क्या जो मुश्किल में छूट जाए। अगर किया है वादा किसी से साथ निभाने का, तो फिर चाहे जमाना भी हमसे क्यों ना रूठ जाए। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हाथ की सफाई से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कभी कभी से आपने अभी ये गीत सुना। और दोस्तों, प्यार का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है और चोरी चोरी से ये रिश्ता एक खूबसूरत सी डोर में बंध जाता है और फिर उस रिश्ते के बिना जीना नामुमकिन सा लगने लगता है। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म धरती कहे पुकार के से ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी से अभी आपने गीत सुना। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरों से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी गृहमंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी
1: into concrete economic outcome.
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा इससे सेवाओं निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों किसानों निर्यातकों और MSMEs पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया सहायक विद्युत इकाइयां एपीयू टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम फायरिंग सर्किट गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का वैकल्पिक स्रोत है जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
4: This is Akashwani, the news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
4: Mr. Goyal said the agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans and will create new employment opportunities. The Commerce Minister informed that New Zealand has committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. India and Canada have agreed to fast-track negotiations for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, with the next round of talks set to commence on 5th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the next 90 days could be a defining period in the bilateral relations with Canada. Mr. Goyal said he held the fourth round of negotiations with his Canadian counterpart in Mumbai last week, during which both countries decided to accelerate the pace of negotiations. On the Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Chief Electoral Officer of Delhi yesterday held a meeting with the recognized political parties yesterday regarding claims and objection period of SIR 2026 and other related matters. The CEO office reiterated the Election Commission's firm commitment to a transparent, participative and inclusive revision process, ensuring that no eligible citizen is left out while no ineligible person is included in the electoral roll. The CEO office has published the list of electors who have been issued notices during the special intensive revision of electoral rolls, along with the reasons for issuing the notices. It has clarified that issuance of notice does not mean that the name of an elector will be deleted from the electoral roll. The Election Commission plans to increase the number of tribunals in West Bengal to ensure speedy disposal of applications from people whose names have been excluded from the electoral rolls during the SIR process. The state currently has 19 tribunals. Our correspondent reports the commission is expected to tell the Supreme Court today that the number should be increased to at least 42, with one tribunal for each Lok Sabha constituency in the state. The Supreme Court is scheduled to hear 13 petitions today relating to the Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls. The commission is likely to apprise the court of the need for more tribunals during the hearing. The Department of Drinking Water and Sanitation yesterday held the first national virtual conference with states and union territories. The conference was held to strengthen the skilled workforce needed for the operation and maintenance of rural drinking water systems under Jal Jeevan Mission 2.0. The Jal Shakti Ministry said that the conference focused on rolling out the Nal Jal Mitra program, which will train village-level technicians in operating and maintaining water supply infrastructure. The program includes a 510-hour short-term course and a 120-hour recognition of prior learning pathway. In Asian Games shooting, India has won 3 medals in Aichi, Nagoya, Japan yesterday. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver medal, while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver medal in the men's team event of the same competition. The trio of Rudraksh Balasaheb Patil, Himanshu Dhillon and Parth Rakesh Mane came second in 10-meter air rifle team event. In mixed martial arts, Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60kg category. In the medal tally, India is currently in 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have congratulated the medal-winning team. And that is the end of this news bulletin.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह की 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को इस सुहानी सुबह में मेरा यानी आपकी दोस्त एंड होस्ट अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह का समय है और मौसम ने भी अब थोड़ी सी करवट ले ली है और ऐसी सुहानी सुबह में दिल चाहता है कि कहीं चला जाए। अब कहाँ चला जाए ये आप तय करेंगे अपने इस समय को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बड़े दिलवाला से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिस तरह से नदी अपनी मस्ती में चलती रहती है बिना कहीं रुके, इधर उधर देखे बिना, वैसे ही जिंदगी में हमें भी अपनी मस्ती में जीते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म सफर से ये गीत।

सुबह के 4:24 और 40 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म बाबू से।

दोस्तों हम किसी के चेहरे को देखकर ही जजमेंट कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, पर जब हम उससे मिलते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तभी हमें पता लगता है कि आदमी सही है या नहीं। और दोस्तों दिल को देखिए, चेहरे को नहीं। आइए सुनते हैं सच्चा झूठा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के

घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात

लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाज में फिल्म आजाद से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी के दिन चाहे जितने भी हों, बस ऐसे हों जिसमें प्यार हो, एहसास हो, सुकून हो और विश्वास हो, और नफरत द्वेष की कहीं भी जगह ना हो।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में फिल्म सच्चाई से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, हमारा दिल एक आस के पंछी की तरह है और हमें कहीं ना कहीं से उम्मीद भी लगी रहती है, पर उम्मीद सिर्फ अपने आप से ही रखिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और आप अपनी मंजिल को भी पाने में कामयाब रहेंगे।

सुबीर सेन की आवाज में फिल्म आस का पंछी से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं नर्तकी फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

बिल्कुल दोस्तों, दुनिया सुहानी ही लगती है अगर आपका मन अच्छा है और आप खुश हैं। जिंदगी में अगर प्यार है, अपनापन है, तो आप अपने आप ही हमेशा गाते मुस्कुराते रहेंगे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और मनहर उदास की आवाज़ में फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल से ये गीत।

बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह ही हंसते रहिए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी, सुबह 6 बजे तक मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक दौरे पर है। राष्ट्रपति आज एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए

0: दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन में आने वाली पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए कार्य योजना पर विमर्श होगा। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो जोन के नए परिसरों की आधारशिला भी रखेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यबल प्रमुखों के साथ अन्य संबंधित सरकारी विभागों और हितधारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अमेरिका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। सहायक विद्युत इकाइयां APU टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में कल 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. India and New Zealand free trade agreement will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, The agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
1: This strategic partnership and the roadmap to 20

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। सुबह की इस सुहानी बेला में भोर सुहानी कार्यक्रम के साथ मैं हाजिर हूं आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आजकल सभी जगह गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में भक्ति का माहौल है और हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। तो आइए हम अपने कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं गणेश जी के भजन से, जो गाया है शंकर महादेवन ने।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म बरखा से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, इस कलयुग में दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देख के ही चलो तो बहुत अच्छा है, ना जाने कौन कब आकर अपनी होशियारी दिखा जाए। आइए सुनते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म से मन्ना डे की आवाज में ये गीत।
1: ए भाई दर...

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता का तार है।

सुबह के 5:25:45 हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 101 MHz पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म से, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में।